0: लेकिन आया क्या, कुछ नहीं आया। डपोल संघ का नाम सुना आपने? आप लोगों ने डपोल संघ का नाम सुना महाराज जी? आपने सुना?
1: नहीं, अभी तक नहीं सुना।
0: सुना दूं? हाँ, देखिए ये भी तो बात है, हमारे मारवाड़ में, गुजरात में, हिंदुस्तान में कहते हैं डपोल संघ। कावल है कि नहीं? तो डपोल संघ की बात कर देता हूं, फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा, ठीक है? एक आई एम ट्रेलिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कॉमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड। एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे। समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है? शिव।

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं, ये शंख इतना चमत्कारिक है। ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है, आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मुला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी। अरे एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट में है, तो दोस्त के वहां गया।

0: तो दोस्त का करे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहाँ चले गए हैं? कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा, शंकर दादा मरी गया क्या? हाँ मरी गया बापू, तो शू कही शंकर दादा ने शू कही लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा, अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे है क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के आठ और मैं नौ, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही है, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आ करके वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो और असली शंख को तो निकाल दिया, और वो जो नकली से लेके आया उसको उसके झोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंख भगवान, कराओ ना। क्या कराए? और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका शंख? अरे बेटा, तेरा शंख वो चुरा गया तेरा दोस्त, असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा शंख देता हूं। अरे वो क्या करता है शंख? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा। कि वो क्या है भगवान, कि मांगना 1,000 रुपया, तो वो कहे 1,000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है। शंख बोलता है, 1,000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, एक ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो। के लाओ देओ कि क्या धक्का दे, धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना। अरे तू क्या नहीं दे रहा है कि नहीं, मेरा नाम है डपोल शंख। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे एक और दे अनेक। कि यह ऐसे कैसे हो सकता है कि देखिए, हे शंख भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंख देव कहता है, अच्छा भक्त आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा, 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ 10 सोना आ जाएगा। कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था भगवान, उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये शंख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए, तो बोला कि अब तो कोई शंख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया, और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले दे भाई? कि हाँ दीजिए। कि क्या धक्का दूं? अरे ये क्या है? कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम है डपोल संघ। तो तब से डपोल संघ बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता है, क्या साहब जी?
1: डपोल
0: संघ। तो डपोल संघ जो था आ गया, चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल संघ वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो He went to the beach, was sitting near the ocean, and he was singing Shiva's name, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Shiva appeared, said, Bhakta, my devotee, bless you, what do you want? He said, I want money, I want this, this, I am very poor. So Bhagavan said, okay, I give you these coins. And whenever you want something, tell this coins, make puja, clean, flowers, incense, etc. And then you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you, Lord. Thank you, thank you. He went. On the way, he had one friend. He stayed overnight there. And what he told the friend, what is this? So in the night, the friend took away the real coins and put it the fake coins. And then the man went next day, after a few days he reached his village and he said, village people, now I have a siddhi, perfections, God gave me everything, now I invite you all for the lunch, a beautiful buffet. So he said, hey Shankadev, oh Lord, please, provide the best food for all. And there's nothing happened, nothing happened. Because the real coins, he took it away. So man was disappointed very much and he went again to the ocean. And then Shiva gave him another one. And that one is that whatever you ask to have, if you ask for $1,000, he said, no, no, no, no, take $5,000,000. So you don't have to ask always. So he said, okay, give me please. He said, what? I can't give you anything, I'm only speaking. I'm not giving. Only promising, promising, but there is nothing. So that is in Rajasthan, in Hindustani language, is some kind of a joke. So you know why? Because people are sleeping. And then Swamiji gives such a nice chutkla. Wo chutkla kya hai? Wo bhojan ke andar chutni, chatpati, chutni kya, to wo jibha ke andar mein phir swad aa gaya. Alright, now exercises. Alright? To aap sidha baithe? Very good. Sit straight. Bahut achha, very good. Now, stretch your legs. Bilkul saavdhan, aapko bilkul halka exercise bata raha hu, but it is powerful. Theek hai? So, कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे बैठे रहे, घुटने को जोड़ दो, यस, और लेग्स लिटिल स्ट्रेट आउट, पैरों को थोड़ा लंबा कर दो, बहुत अच्छी। इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप एंड इंटरलॉक योर थम्स, स्ट्रेच योर हैंड्स मोर अप, तो ये साइड मसल्स स्ट्रेचिंग, एंड हैंड्स डाउन, हैंड डाउन ऑन द थाइज, वंस मोर इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल exhale, inhale and look up to the ceiling, exhale. Now inhale and stretch your hand sidewards and above the head. Exhale in the front, hands down. One, inhale. Exhale. Yaad rakhna, bolna mat. श्वास लीजिए एक और दो, दूसरा था एक और दो, अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और कहनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए, घुमाए एक, श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए,

0: और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थोड़ी को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट एंड इनहेल अप गुड 10 टाइम्स श्वास लेना सिर को देखिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए जालंधर बंद आकाशी मुद्रा और जालंधर बंद बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा अब पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों के अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड रिलैक्स ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है पैरों में दर्द हो रहा है ये सब चला जाएगा दर्द भग जाएगा कहीं एक दो वन अंगूठा पकड़ो अंगुली पकड़ो सब टू वन टू अब एक Stretch your toes towards the floor in the front of you and inhale. Exhale and inhale. इसको भी 10 बार इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए अब इसे एक सर्कल बनाइए वन टू थ्री फोर फाइव अदर डायरेक्शन वन टू थ्री फोर फाइव बहुत अच्छा पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए एक और धीरे धीरे आगे झुकिए जितना झुक सके अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते हुए वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे एक श्वास लीजिए दो श्वास निकालिए तीन श्वास लीजिए ऊपर चार श्वास जोड़िए और अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना एक दो, चार, स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज। जो एक मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो, यस, नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा। उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है। वाह, अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में। अरे वाह। अब इसको बंद करें और खोले, मुट्ठी को बंद करें और खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। भाई देखो, खाने का बढ़िया हो तो मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा देखिए हाथ को, लुक टू योर पाम, सीधा बैठो ही, हाँ, नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस। And now only open the palm, the left hand, and look to your palm and tip of the fingers. But right hand is holding your wrist. Dekhiye, aapka heart bilkul looks like a pale. Ab dekhiye, heart ko aur dekhiye, anguliyon ko dekhiye, look your fingers, look your palms. And now release your right hand and look to palm, what's happening? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं, इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने। तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हैं हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट, एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखा है, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए कहाँ है, उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, एंड नाउ व्हेन आई से थ्री वन देन यू विल रिलीज, थ्री टू वन, हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो देखिए अब आपके हाथ जो हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस डू इट लाइक दिस, क्यों ऐसा करोगे तो क्या था आपके हाथों के अंदर में एक चमत्कार बता देता हूँ। चमत्कार बता दे वहां क्या आएगी तो महाराज जी थोड़ा बहुत चमत्कार करें। ठीक है चमत्कार को
1: नमस्कार।
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं। हाथों नाउ मिरेकल, नाउ यू विल हैव ए मिरेकल। यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वांट, सिट इन योगा पोस्चर, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एनी आसन वेर यू फील कंफर्टेबल। अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, लुक बोथ पाम्स, हाँ दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है। अच्छा एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है। अरे हाँ वो तो जाना चाहिए, लक्ष्मी चंचल है। पानी तो चलता भला पड़ा गंदेला होए। वाह भाई वाह। अब ऐसे करिए हाथों को, अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग, जस्ट लुक लाइक दैट। नाउ आई वॉन्ट दैट यू हैव 1000 times मोर टिकलिंग और लाइक ए नीडल्स गोइंग थ्रू योर पाम्स दैट वी शुड फोल्ड योर हैंड्स। Fold your hands and now rub the palms

वेरी गुड. अब ऐसे 1 इंच दूर रखो. अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है. और ऐसा करिए धीरे धीरे. वो प्रेशर आता है ना, मैग्नेट. और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम. देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन. सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है. कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा. या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं. तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल and take all the toxins and the pain out. Self healing. To bas aaj to itna hi. That's all for today. Session is over. It was 1.5 hours.

श्री दीप नारायण भगवान की, देवपुरीशा महादेव की, देवादिदेव देवेश्वर भगवान माधवन जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, महाप्रभु जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हरिओम, हाउ आर यू एवरीबॉडी? यस, वेरी गुड, वेरी फाइन, दैट्स गुड। एंड डिड यू हैड योर डिनर? हु डिड नॉट हैव डिनर, हैंड अप। कल खाएंगे, आज अब आज ही आफ्टर भोजन का बाय द टाइम एंड व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू द टाइम देन नो मोर ईटिंग नेक्स्ट डे। दिस इज ए डिसिप्लिन। व्हाट इज दैट डिसिप्लिन? सो ऑन द टाइम यू शुड गो फॉर ईटिंग। इफ यू हैव समवेयर टू गो दैट यू आर outside for some work or something, that is a different. All right, we will practice today

नारा श्रीदीप नारायण भगवान की हैंसार लेग्स अपार्ट नाउ बेंड टू द लेफ्ट लेग्स मोर अपार्ट मोर अपार्ट मोर मोर मोर मोर मोर एंड स्लोली इन द मिडल राइट साइड

देखिए फूल को आगे रख कर उस पर ध्यान करना। कम इधर, अदर लेग प्लीज, यहाँ से वहाँ दूर रख करके रखो फूल, और फिर देखना अब पड़ा तो डंडा ठोकूंगा जोर से। सो वंस मोर कॉन्सेंट्रेशन, बैलेंस, पुट इट 2 मीटर डिस्टेंस फूल, फूल 2 मीटर दूर तक। हाँ वापस जाओ, अब देखो उसको, फिर जा थोड़ा पीछे, बस इस पे कॉन्सेंट्रेट, उसी को देखना है।

दीप नारायण भगवान की देवपुरी समाधि, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।

0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग,
1: dobrý večer,
0: dear sisters and brothers,
1: milí sestry a bratři,

0: विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: Vishvaguru Mahamandala Eshwar Paramhans Shri Swami Maheshwarananda Ji Gurudeva Ki Jaya.

अलक पुरुष जी महादेव, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन दार, ओम शांति शांति, शांति।

0: भगवान की
1: जय।
0: गुड नून, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी, नाइस टू सी यू, ब्यूटीफुल डे, सनशाइन।
2: Jó napot, jó reggelt, mindenkit köszöntök, jó látni benneteket, süt a nap.
0: The message is coming from our Yoga and Daily Life retreat in the Vip, Hungary.
2: Üzenetünk a joga mindennapi életben rendszer visszavonulásáról, Vipről, Magyarországról jön.
0: In these 2 weeks we have very beautiful programs.
2: Két hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
0: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
2: Yoga és a Védák tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
0: It is a science. It has been proved.
2: Ez egy bizonyított tudomány.
0: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc. is they have forgotten or they lost many things.
2: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
0: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
2: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
0: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
2: Ez a négy, az áhár, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
2: A vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
2: És hogyan viselkedsz.
0: How you are living with someone.
2: Hogyan élsz valakivel.
0: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy goes in your body.
2: Minden érintés vagy ránézés átveszi az energiákat.
0: Ahar, vihar, achar and vichara. After comes the vritti, the thoughts.
2: Utána jönnek a vrittik, a gondolatok.
0: So from the food, from the company, from the place where you go, and that according to that the thoughts comes.
2: Étel, a társaság, a hely, ahova mész, meghatározza gondolataid.
0: You have to control your horse.
2: Uralnod kell lovaidat.
0: And we have 10 horses of our senses.
2: 10 ló van az érzékszerveknek.
0: And you have to control them.
2: Ezeket kell uralni.
0: Positively, not negatively.
2: Pozitívan, nem negatívan.
0: But you have to purify your vrittis, your thoughts.
2: Meg kell tisztítani a vrittiket, gondolatokat.
0: That's it. Well, we have here very learned acharya, the pandit.
2: Itt van velünk egy nagyon tanult acharya, pandit.
0: He studies Sanskrit.
2: Sanskritot tanult.
0: And he is one of the best in the Karamkanda.
2: És ő az egyik legjobb a Karamkandában.
0: Now, many you don't know what's Karamkanda.
2: És nem tudjátok mi ez.
0: We know the karma.
2: Tudjuk mi az, hogy karma.
0: But what is the kand?
2: És mi az, hogy kand?
0: Kand means disaster.
2: A kand az katasztrófa.
0: If you make karma and kand.
2: Hogyha a karmát és a kandot végzel.
0: Or there are different chapters.
2: Vagy vannak fejezetek.
0: So there are many different things.
2: Különböző dolgok vannak.
0: So our acharya Triveda Kapila.
2: Acharya Triveda Kapila.
0: Is with us.
2: Itt van velünk.
0: And I think he should tell about something, the Karamkand.
2: Elmondja, mi az a Karamkand.
0: And the effect.
2: És annak hatásai.
0: Of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
2: Pujak és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
0: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi.
2: Köszöntelek benneteket és Kapil Trivedi Panditjit.
0: Yes, Panditji, you are on the line. Floor is yours.
2: Pandici, tiéd az.
0: Bolo.
2: So.
1: सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन दीप नारायण भगवान की जय सदगुरु देव की जय आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं तो गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन प्रणाम गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं भगवान के चरण में जाते हैं गुरुदेव की शरण में जाते हैं
0: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग वी वेर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस अनुवाद करता हूं सो द Panditji said,
2: Panditji Asmanta.
0: First off, the adoration to our Guru Parampara,
2: Guru Paramparánknak fejezte ki tiszteletét.
0: Then said, we are all blessed one.
2: Aztán mondta, hogy mind áldottak vagyunk.
0: That we are all here together.
2: Együtt lehetünk itt.
0: And that we are here in the shelter of the Gurudev.
2: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
0: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
2: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
0: But finally we got a human life.
2: És annak a végén az emberit.
0: Human life should be very pure.
2: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
0: You have to come to the God as pure you were.
2: Tisztán kell jönni Istenhez.
0: So he said we are lucky.
2: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
0: And we are going to have some havan yagya puja
2: havanat yagya pujat fogunk gyakorolni
0: and so let's go what he said in short sentences theek hai thoda bolna taki pura bataye
1: aap aur sab hum sab yagya aur havan pujan ke bare mein janenge yagya ko karne se parmatma ke bahut hi nazdeek aap aur hum sab pahunch sakte hain
0: While making the yagya,
2: yagyát végzünk,
0: ceremonies, we will have a easy access to God.
2: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
1: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है अगर उस पूजन को उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती हैं
0: इन लाइफ मेनी टाइम्स there's up and down.
2: Életben sokszor fe és lefelé szállunk.
0: There are different circumstances, different kind of situations.
2: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
0: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
2: Yagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
1: ये एक प्रकार का विज्ञान है. यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है. उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं, तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है, और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं.
0: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
2: टू द मैन
0: वैदिक साइंस
2: वैदिक टू द मैन
0: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज I told before, he mentioned.
2: A vastu sastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
0: Exactly the yagya ceremony must be done in proper measurement.
2: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
0: And in the proper scale. East, west, north, south.
2: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
0: And that fireplace for the Yagya is like the mouth of the god.
2: Yagya tűzhely az olyan, mint Isten hegye.
0: And what the mantras is coming like from that supreme.
2: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
0: And how you will think and you will offer your ceremonies there that will become fruitful for you, liberating you.
2: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
1: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं. मंत्र जो हैं वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं. अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है, और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है. और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है, और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है.
0: द स्क्रिप्चर्स द वेदास उपनिषद एक्सेट्रा देयर मंत्रास विच influences the devas.
2: Iratok, védek, upanishadok, bantrái hatnak a devakra.
0: Invite them.
2: Behívja őket.
0: And these mantras, these ceremonies is perfection by those scholars, so-called the pandit.
2: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
0: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yagya is.
2: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
0: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
2: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
0: So this is not only just what we call a mantra chanting, it is the science, it is Sanatan.
2: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, Sanatan.
0: It is eternal.
2: Örök.
0: Unchangeable.
2: Megváltoztathatatlan.
0: It is the truth.
2: Az igazság.
0: Is that scriptures?
2: Ez van az iratokban.
0: That granthas.
2: A grantákban.
1: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है. आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है. तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहां पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें. ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है.
0: सो सच्चे अपॉर्चुनिटी, सच्चे ओकेशन,

0: such a situation that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadgurudev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it
1: nagy...
0: is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Szatgurudév jelen van, akkor egy mantra egy ahotta kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Szatgurudév tanulja a mantrádnak.
2: एक मंत्र के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा.
0: With his one mantra chanting, he is going to finish his speech.
1: एक मंत्र संगतेशवा फोगे बफेयजनी.
2: ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा. ध्यान करने के योग्य गुरु जी की प्रतिमा है, गुरु जी की मूर्ति है. ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं. पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं. मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान गुरु की जो कृपा है, वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है. मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा. आप सब एक बार बोलिएगा,

0: Yay!
1: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
0: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
1: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
1: एडोरेशन
2: वोदोलात
1: ग्लोरी
2: दिचोइतेस
1: टू डिवाइन मदर
2: दिष्टनी अन्यानक।
0: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव श्री देवापुरीषा महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वर।

0: ओम शलभपुंज महादेव की
1: की
0: जय।
1: जय।
0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परम।

गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय मंचस्थ महामंडलेश्वर जी, ज्ञानेश्वर पुरी जी जोधपुर से पधारे हुए

अखिलेश्वर जी और कपिल जी, फूलपुरी जी, माँ मंडलेश्वर फूलपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी और यहाँ के सभी अध्यापक वृंद, आए हुए हमारे अतिथि झूमरलाल जी और समस्त विद्यार्थी गणों, आज के शुभ अवसर पर आज द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव का द्वितीय पाठोत्सव को हमने मनाया है और बड़े धूमधाम समारोह पूर्वक महादेव जी का अभिषेक करते हुए हमने उनका शुभारंभ किया है और दूसरा पाठोत्सव इसको हमने बनाया है। इसको वर्षगांठ भी कहते हैं और वास्तव में इसको पाठोत्सव भी कहते हैं। पाठोत्सव का अर्थ है पाठ का मतलब खोलना और उत्सव का मतलब सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी पाठोत्सव तो हमने मनाया। अब इस अवसर पर मैं अपने दो शब्द आपको, क्यों चूंकि विद्यार्थी हमारे समक्ष बैठे हैं और गुरुजन हमारे समक्ष बैठे हैं तो एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, क्योंकि स्वामी महेश्वरानंद जी ने दैनिक जीवन में योग की परंपरा को स्थापित करते हुए हमारे देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व को भी अपनी एक शिक्षा दी है। दैनिक योग के साथ साथ आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार को शुद्धिकरण करने के लिए उन्होंने बल दिया। हम भारतीय लोग भी आहार शुद्धि रखते हैं और आहार शुद्धि रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि आहार से हमारा मन शुद्ध होता है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व का मतलब हमारा ये शरीर, भौतिक शरीर, हमारा जैसा भोजन होगा वैसा ही हमारा शरीर होगा। इसलिए आयुर्वेद में, सुश्रुत में, बड़े बड़े चरक आचार्यों ने आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, अगर हमारा ये सत्व, हमारा शरीर एकदम अच्छा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा तो हमारे स्मृति जो जिनको कहते हैं मेमोरी, स्मृति ये एकदम स्थायी रूप से हो जाएगी और जो भी हम याद करेंगे वो तत्काल हम पूर्ण रूप से उसको याद कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वो एक पुस्तक को आगे से पढ़ना प्रारंभ करते थे, पीछे तक पढ़े बिना उस पुस्तक को छोड़ते नहीं थे और उसको पूरा पढ़ करके उसका पूरा पूरा नॉलेज क्या होता है वो स्वामी विवेकानंद जी को तत्काल ज्ञात हो जाता, क्योंकि आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। तो बच्चों, हमें अपने आहार को सुधारना है। यदि आहार सुधर गया तो हमारे मस्तिष्क, मन मस्तिष्क और पूरा वातावरण सुधर जाएगा। तब आप लोग कह सकते हो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्य हम। मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तक अवतरित होता हूँ। वो ईश्वर आप में ही अवतरित होगा, अपने आप को स्वयं को बनाएंगे तो अवश्य ही इस पूरे संसार में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम जागृत कर पाएंगे। तो बच्चों, विवेकानंद जी ने भी कहा है उठो जगो और चलो अपने मार्ग पर। आपका कौन सा मार्ग है जो आपके प्रारब्ध ने आपको निश्चित करके संसार में भेजा है? इतना कह करके एक साथ एक भगवान की धुनी करते हैं, आप भी मेरे साथ बोलेंगे दीप निरंजन सब दुख भंजन, दीप निरंजन इसी मंत्र से होवे सब मंजन। प्रभु से दीप निरंजन सब दुख भंजन। आज इतना ही, धन्यवाद। आपने हमको सुना और आचार्यों के सभी चरणों में, श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और ऐसे कार्यक्रमों में बार बार पधारते रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहे हैं। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की, होली गुरु जी माधवानंद जी गुरुदेव की, देवपुरी सा महादेव।

0: की विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी गुरुदेव आज के आनंद के।
1: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मे से गुरुदेव नमः। सबसे पहले मेरे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और आज स्वामी जी ने आपको सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मैंने अभी आपकी सबकी फ़ोटो स्वामी जी को भेजी है तो वो बड़े खुश हुए हैं और उन्होंने आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी फुलपुरी जी, जोधपुर से आए हुए हमारे संतजन, हमारे राजेंद्रपुरी जी, छगन जी, चंदन जी, हमारे माधव जी और हमारे विदेशी भक्त जो इस कार्यक्रम को यहाँ से लाइव देख रहे हैं अपने अपने देशों में, और इस स्कूल के आपके सुरेश जी गर्ग और इतने सारे बच्चे जो यहाँ आए हैं, आप सबका मैं स्वामी जी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको ये विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपको पता ही है कि आज हमारा जो दुनिया का 8वां अजूबा है ओम आश्रम, उसकी 2nd एनिवर्सरी है। मतलब आज के दिन हमारे इसकी उद्घाटन हुआ था, 2 साल हो गए हमारे इसको बने हुए, उद्घाटन हुए हुए। तो इस आश्रम के बारे में और स्वामी जी ने जो ये बनाया है आश्रम के बारे में, मैं सब बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में ये पहला मानव निर्मित भवन है जो हमारे गुरुदेव ने बनाया है। तो हमें ये गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे भारत में और हमारे राजस्थान में एक ऐसा अजूबा है जो पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और इसकी सारी जो ख्याति है और जो इसकी जो महिमा है वो सारी हमारे जो साधु संत हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं, आप देखेंगे विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। ये पहला ऐसा सेंटर है जिसमें करीबन इतने सारे विदेशी लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा सनातन धर्म में जो ताकत है वो पूरी स्वामी जी ने विदेशों तक फैलाई है और उसके लिए हम स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमें खुशी है कि इतने सारे बच्चे इस उम्र में अगर आके और जिस सनातन धर्म का ये सुन रहे हैं ओम आश्रम के बारे में, तो ये एक हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
2: ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वान्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। इस मंत्र के साथ मैं हमारे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेशानंद जी को प्रणाम करता हुआ अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा। आपको तो वैसे सबको इंग्लिश तो आती है क्योंकि आधा आधा इंग्लिश तो बोलते ही रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 2nd एनिवर्सरी ऑफ ओपनिंग ऑफ ओम आश्रम। Today we have a great guest. We can say our friends, our colleagues, our well-wishers. Mahamandaleshwaram Shri Swarupananji Maharaj from Jodhpur. He is excellent speaker on all kathas or Ramayan, on Shiv Puran, Bhagavad Katha. He speaks on Advaita Vedanta, on Upanishads, in many places. He has his ashram in Jodhpur, Ahmedabad. He's traveling very often and many, many places. Beside him, you can see our Swami, Mahamandaleshwar Swami, Chetangiriji Maharaj from Sojat. He's connected with us for the last 40 years. So I'm welcoming both of them to our ashram. Mahamandaleshwar Swami Fulpuriji doesn't need any introduction. He is part of our family. आचार्य।

Rajendra Puri ji is also here. And we have also on one side, we have Kapil ji Agarwal from Jaipur, a big businessman. And our Mother Prasad Sharma, who taught many of us Bhagavad Gita and many other shlokas. So I welcome him also. We have here Chandanji, Chaganji, all the Nepal Rani, all our friends are now on the stage. So this is the opportunity to remember that Swamiji did a miracle. He managed to create a big ashram, such amazing structure that we can even call it the eighth wonder of the world. I was just now in Bikaner and I saw that even the king took a lot of time to make some temple. But Swamiji managed to overcome so many problems, so many things, and he managed to give to the world, to the India, this amazing Om Ashram, Dvadash Jyotirling, and all us together united under one roof. तो बाप जी ने जो यहाँ काम किया था एक चमत्कारी बात है चाहे 25 साल 30 साल लग गया लेकिन संपूर्ण हो गया जो आप सुन रहे थे एक जुबा है एक चमत्कार है ये मंदिर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और ऐसे बड़ा मंदिर बनाना इससे डबल गुना बड़ा है तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग स्कूल से पधारे स्कूल हमारे निदेशक साहब को और सारे टीचर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपकी इतनी शांति से बैठे मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस शब्दों के साथ जय श्री राम

महामंडलेश्वर ज्ञानपुरी जी, ज्ञानपुरी जी, ज्ञानेश्वरपुरी जी, और पूज्य गुरुदेव महेश्वरानंद जी के ही शिष्य महामंडलेश्वर श्री फूलपुरी जी और उन्हीं के शिष्य राजेंद्रपुर जी और यहाँ पर मंच पर उपस्थित समस्त अतिथि आश्रम के आत्मीयता से जुड़े हुए सभी और आज इस आश्रम की ओम आश्रम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा द्वितीय उत्सव के वार्षिक उत्सव पर उपस्थित समस्त बच्चों, प्यारे बच्चियों, ध्यान देना। एक हमारा मंत्र है, आप विद्यार्थी हैं और इस आश्रम से यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा यहां पर गुण, संस्कृति भारत की जो है उससे ओतप्रोत यहां पर कराया जाता है। न गुरोर अधिकम तत्वम, न गुरोर अधिकम तपह, तत्व ज्ञानात् परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का सबसे जीवन के अंदर सबसे बड़ा ऐश्वर्य है वो विद्या है। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी यदि कोई ऐश्वर्य है वो विद्या ही है। और उस विद्या को बच्चों ध्यान देना, बात को आप गेट की तरफ आप ध्यान नहीं दे, जिनको बाहर जाना तो जाइए, बच्चों का ध्यान बार बार उधर जा रहा है। बच्चे आपके जीवन के सबसे बड़ा ऐश्वर्य विद्या है। और विद्या जो है ना, अब अपनी मारवाड़ी भाषा में थोड़ी बात कर लेता हूं आपसे कि हम किसी से यदि कुछ अर्जित करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वहां अपन पुत्र बनकर के, शिष्य बनकर के, पूर्ण शनागत धारण करके हम अर्जित कर सकते हैं। बाकी कोई व्यक्ति अपने अहंकार से, अभिमान से या घमंड से कोई किसी से कुछ नहीं अर्जित कर सकता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए जीवन के अंदर गुरु से बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है। न गुरोरि अधिकम तत्व, गुरु शब्द का अर्थ है जो हमारे पूज्य गुरुदेव महेश्वरानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर जिस ज्ञान का प्रकाश फैला करके पूरे विश्व के प्राणियों का ध्यान भारत भूमि की तरफ और उसी भारत भूमि के अंदर राजस्थान प्रदेश और राजस्थान के अंदर ही भी वो पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली जिला, और पाली जिले के अंदर ही ये पाली और सोजत के बीच में ये डाडन जो भूमि है, जहां पर जो अभी अभी बताया गया कि विश्व का ये आठवां अजूबा जो ओमकार का स्वरूप में यहां पर दिव्यता से ओतप्रोत ओम आश्रम की स्थापना, तो वो जो ज्ञान जो अपन को अज्ञान पे अंधकार से हटा करके ज्ञान पे प्रकाश की तरफ जो अपन को बढ़ाए, उनको गुरु कहा गया है। अपन आज कम से कम यहां पर अभी जो विद्यार्थी है करीब 480 और 500 के बीच में यहां पर विद्यार्थी बैठे हैं।

0: सब यहां से अपने जीवन का तत्व जान रहे हैं। हाँ, आप एक भाषा को तो सीख रहे हैं, इंग्लिश भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, ये सब भाषा जीवन के तत्व को जानने का एक माध्यम है। गुरु से बढ़कर के इस जगत के अंदर कोई ऊंचा नहीं है, ना गुरु अधिकम तत्व, गुरु से बढ़कर के कोई जीवन के अंदर अपना तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ना गुरु अधिकम तप, गुरु से बढ़कर के कोई तप नहीं। हमने देखा है कि जिस समय इस आश्रम की, यहां पर कुछ नहीं था, जंगल था, बबूल आदि यहां पर झाड़ियां खड़ी थी, परंतु विश्व गुरु महामंडलेश्वर जमेश्वरानंद जी महाराज की वो शुभ दृष्टि का पात हुआ इस भूमि पर। उनकी जब नजर यहां पर पड़ी तो यहां पर देखिए, जहां संत है वहां वसंत है। यहां पर पूज्य गुरुदेव की नजर पड़ी और गुरु जी का माधवन जी की भी कृपा हुई, और यहां पर इस जहां पर कांटों की झाड़ियां थी, आज यहां पर पूरे विश्व के अंदर लोग यहां पर पर्यटक के रूप में आ रहे हैं। ये संत, जहां संत है वहां वसंत है, वसंत का मतलब आनंद है, और जिस आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, ओपोजिट वर्ड नहीं है, सुख का दुख है, लाभ कहानी है, जय का पराजय है, परंतु आनंद का कोई विलोम ओपोजिट शब्द नहीं है। तो ये गुरु की ही तप तपस्या है कि एक 25 साल के अंदर इतना भव्य, सही पूछो तो कभी कभी तो हमारे मन में भी आता था कि महेश्वरानंद जी महाराज ने इतना बड़ा ओमकार का ये स्वरूप जो आकृति ली है, ये किस तरह से पूर्ण होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक क्षणिक जीवन होता है, किस समय क्या हो सकता है, अगले पल की जिनकी कोई खबर नहीं। और वो आज ध्यान देना बच्चों, ये गुरुजी की बहुत ही महत्व तप है, जिनसे तब से जाकर के उनके जीवन काल में ही ये ओमकार स्वरूप का जो विश्व का आठवां जुबा है बनकर के आपके हाथों से ही 2 साल पहले सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में यहां पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ना गुरोर अधिकम तत्वम, ना गुरोर अधिकम तप, गुरु से बढ़कर के और कोई तप नहीं हो सकता है। ना गुरोर अधिकम तत्वम, ना गुरु अधिकम तप, तत्व ज्ञानात परम नास्ति। ध्यान देना, इसी ओम आश्रम से जो भारत भूमि, जो ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, जहां भारत से सदैव, और जिस विद्या के कारण, जिन ज्ञान के कारण भारत विश्व गुरु कहलाया और आज भी है, ऐसी बात नहीं, जो ब्रह्म विद्या है, जो हमारे वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद है, उपनिषद के अंदर जो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान भारत को छोड़ करके और विश्व के अंदर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म विद्या जो समस्त विद्याओं की राजा है, जो गोपनीय विद्या है, वो गोपनीय विद्या यहां ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदान की जाती है। ना गुरुर अधिकम तत्व, ना गुरुर अधिकम तप, तत्व क्या ना, जो ब्रह्म विद्या संपूर्ण विद्याओं का सार है, वो ज्ञान का सूत्र इस ओम आश्रम से निरंतर। और गुरुजी ने पूरी पृथ्वी का जो वसुंधरा है, अनेकों बार पूरी वसुंधरा का भ्रमण करके, एक बात और समझना, पूज्य महेश्वरन जी ने पूरी पृथ्वी का अनेक बार भ्रमण करके इस वसुंधरा और पूरे ब्रह्मांड का सार जो वेदों के अंदर भी बताया है वो ओमकार उस निचोड़ को अपने जीवन में साधना बना करके उस साधन तत्व को यहाँ पर इस भारत भूमि पर अपनी ये डाडन की भूमि पर उन्होंने स्थापित करके जगत के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन का यदि कोई सार है तो वो ओम ही है। इसलिए ध्यान देना, आवता हरि ओम बोलो, बैठते भी हरि ओम बोलो, उड़ते भी हरि ओम बोलो, सुबह भी हरि ओम बोलो, उगड़ते प्रभात आप हरि ओम बोलो, यही जीवन का सार है, जीवन का तत्व है। आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है बच्चों, अपने जीवन के अंदर सर्दावान लभते ज्ञानम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है, जो अपने गुरुजनों के प्रति, गुरु का मतलब आप समझ लेना, गुरु से जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो तो गुरु है ही है, परंतु हमारे परिवार में भी, हमारे कुटुंब के अंदर भी, जो हमारे बुजुर्ग है, जो बड़े हैं, उनके प्रति भी हमारा आदर होना चाहिए। सत्कार के साथ में आदर रहेगा, उनके प्रति हमारा मान रहेगा, सम्मान रहेगा, उनके प्रति पूर्ण शरणागति होगी, समर्पण होगा, उनके चरणों के अंदर जब अपन अपने जीवन को पूर्ण निछावर कर देंगे, तभी जाकर के वो तत्व का ज्ञान अपन को प्रकाशित होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के, और वो भी श्रद्धा कैसी, आदर युक्त। एक श्रद्धा तो वो भी होती है भैया, जैसे अपने जीवन भर कठिन परिश्रम करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और बैंक में जाकर के जमा कराते हैं, और वहां पर बैंक मैनेजर केवल एक सिग्नेचर करके देता है, वहां केवल बैंक मैनेजर के सिग्नेचर के ऊपर हमारी श्रद्धा है, परंतु उसी बैंक मैनेजर को यदि कभी अपन पैसा लेने के लिए वापस जाते हैं और बराबर जब कोई टॉकिंग नहीं होती है तो बाहर आकर के उसी मैनेजर को हम भला बुरा कह देते हैं, तो वो केवल श्रद्धा, वहां केवल कोरी श्रद्धा है, वो आदर नहीं है। यदि हमें अपने गुरुजनों से, अपने परिवार में जो बड़े बूढ़े हैं, उनसे हमारी जो कुल की जो परंपरा है, कुल की जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस ज्ञान को यदि अर्जित करना है बच्चों, तो अपने परिवार के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग है, जो वयोवृद्ध है, हम उनके पास में बैठे। आजकल किसी को बैठने का समय नहीं है, क्योंकि हम सब अपना वो हाथ में लेकर के चलाते रहते हैं। कभी हम अपने परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, उनके पास में बैठेंगे तो बहने भाइयों बच्चों, जीवन का बहुत बड़ा तत्व अपन को जानने को मिलेगा। और जब तक हम उनके पास में नहीं बैठेंगे तो हमारी कुल की जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उस संस्कार का अपने हृदय के अंदर आत्मसात नहीं होगा। तो हम यहाँ पर गुरु जी के चरणों में बैठे हैं आज, यहाँ पर यही कामना करें कि हे भगवान, वो शक्ति दे, वो बल दे, वो सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन के अंदर जो जीवन का तत्व है उसको हम प्राप्त कर ले। जीवन, मनुष्य जीवन जिसमें सार्थक होवे, वो सार्थकता हमको प्राप्त हो जावे, इतनी हम गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
1: शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योम बद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विश्व में धर्म प्रधान भारत देश, उसमें भी पुण्यतम पवित्रतम सतियों एवं रणबांकुरों की भूमि मारवाड़ राजस्थान के पाली जाडन विश्व प्रसिद्ध ओम दीप गुरुकुल के प्रांगण में परम श्रद्धेय परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस प्रभाजकाचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बाद विश्व में सर्वाधिक भ्रमण करने वाले विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव द्वादश स्वरूप में विराजमान उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन इस संस्था के महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस प्रभाजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी फूलपुरी जी महाराज और जाडन के पास में ही विराजमान सोजत में देश के परम विद्वान वेदांत मार्तंड सभी दर्शन एवं शास्त्रों के प्रकांड विद्वान वेदों के ज्ञाता महामंडलेश्वर स्वामी चेतन गिरी जी महाराज और इसी संस्था के महामंडलेश्वर विश्व गुरु जी महाराज के परम कृपा पात्र जयपुर से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और संस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय अवतार पुरी जी महाराज साथ ही सभी को कंधे से कंधा मिलाकर सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में सहयोग देने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय राजेंद्र पुरी जी महाराज मंचासीन सभी संत वृंद और हमारे शिक्षक वर्ग जो देश के बच्चों का भविष्य बनाते हैं सभी हमारे अध्यापक गण और देश का भविष्य हमारे छोटे प्यारे बच्चों बड़ा ही सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है। ओम दीप गुरुकुल जो विश्व प्रसिद्ध है गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम है उसकी द्वितीय पाठोत्सव कहें वर्षगांठ कहें मनाया जा रहा है और आज इसी स्कूल के बच्चे हमारे सामने बैठे हैं क्योंकि मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश गए थे तो उन्होंने भी एजुकेशन कॉलेज की भी ली थी और शास्त्र की भी ली थी। स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने भी कॉलेज की दीक्षा भी ली और साथ साथ में अध्यात्म और शास्त्रों की शिक्षा भी। इसलिए शास्त्र में आता है सा विद्या या विमुक्ते। विद्या हमें वो नहीं चाहिए जो केवल हमें शिक्षा प्रदान करे नास्तिक बनाए विदेशों में जाकर के माता पिता के संस्कार को भूल जाएं, देश की संस्कृति को भूल जाएं। हमें विद्या वह चाहिए जो देश में रहें या विदेश में रहें देश की संस्कृति संस्कार माता पिता का सम्मान और हमारे गुरुजनों का आदर सिखाए। मैं कई बार ये कहा करता हूँ हम एजुकेशन तो लेते हैं आजकल मैं चर्चा करूँगी यदि उग्रवादियों की बम विस्फोट करते हैं लोगों को मारते हैं लोगों को जलाते हैं जगह जगह उपद्रव करते हैं जन हत्या करते हैं स्कूलों में बम विस्फोट करके बालकों की हत्या करते हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं पता है आपको? सब हाई एजुकेटेड है सारे के सारे हाई एजुकेटेड है MBA, MCA, MTech, BTech, IIT, IIM किए हुए जो हमारा आपको बहुत कम शिक्षा मिलती है लेकिन वो काम क्या करते हैं बम विस्फोट करके लोगों को मारना संस्कृति को समाप्त करना देश में गद्दारी पैदा करना देश में विस्फोट करके सबको उजाड़ना संस्कृति उजाड़ना संस्कार सब कुछ करते हैं। और याद रखना एक हमारे नरेंद्र मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं योगी जी भी पढ़े लिखे हैं और ये संत महापुरुष जो बैठे हैं ये सब लोग भी पढ़े लिखे हम लोग भी पढ़ लिख करके आए। मैं पहले सिविल का इंजीनियर हूँ उसके बाद मैंने वेदांताचार्य षड्दर्शनाचार्य

फिर मैंने वेदों के ऊपर पीएचडी किया। पढ़े लिखे आप भी पढ़ेंगे, एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन नहीं होगी तो पशु के समान जीवन बिताना पड़ता है, पशु की तरह। एजुकेशन कोई भी हो, मैं कहा करता हूं हर जगह जाकर के, माता पिता कितनी भी मेहनत करें, चाहे दो रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। अच्छे कपड़े की जगह फटे कपड़े पहन लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। समय आ जाए मकान को भी गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाना, और समय मिले तो माताओं से अनुरोध करता हूं सोने चांदी के अपने जितने भी गहने हैं उनको भी गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाए। एजुकेशन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, लेकिन वो एजुकेशन आतंकवादियों की तरह नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को आईआईटी आईआईएम एमबीए एमसीए एमटेक बीटेक कराते हैं, लेकिन वो आतंकवादी बनकर के जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को मारते हैं, संस्कार संस्कृति को नष्ट करते हैं, देश को पथभ्रष्ट करते हैं। और यदि वही संस्कृति संस्कार संस्कृति से संपन्न होगी, एमटेक बीटेक करें, आईआईटी आईआईएम करें, एमबीए एमसीए करें, लेकिन वो संस्कार के सहित होगी, तो वही नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे देश पर गौरव करके देश के नाम को, आपके नाम को, मारवाड़ के नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाएंगे। मारवाड़ में पढ़े लिखे तो लाखों लोग हैं, लेकिन स्वामी महेशानपुरी जी ने जो कार्य करके दिखाया, विश्व के 100 से ऊपर देशों में भ्रमण करके सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। वो चाहते तो फैक्ट्रियां खोल सकते थे, वो चाहते तो होटल खोल सकते थे, वो चाहते तो और सब कुछ खोल सकते थे, लेकिन खोला क्या, ओम दीप गुरुकुल विद्यालय खोला है, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, गौशालाएं खोली हैं, किसके लिए, आप सबके लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए, कि सनातन का नाम पूरे विश्व में। संत पैसा आएगा तो सनातन के लिए लगाते हैं, विश्व में नाम है ओम दीप गुरुकुल का। कल आप भी कल विदेश में जाएंगे तो आप कहेंगे हम उस ओम दीप गुरुकुल विद्यालय के पढ़े हुए हैं जहां स्वामी महेशानंद जी महाराज ने बनाया, जिसका नाम वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में नाम है। आपका एक स्वाभिमान होगा हम वहां पर पढ़े हुए, हम लोग भी कहते हैं कि हम उस स्कूल में पढ़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, उन्होंने कहा था कि जिस देश की संस्कृति मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा, और जिस देश की संस्कृति कमजोर होती चली जाएगी वो देश मिटने में समय नहीं लगता है। आज हमें अपने देश की संस्कृति संस्कार को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। वो कब पहुंचेगी, जब हमारे एजुकेशन के साथ साथ संस्कार और संस्कृति होगी। स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के जीवन में देखिए संस्कार संस्कृति को लेकर के 100 से ऊपर देशों में जाकर के प्रचार किया है। जार्डन का नाम विश्व के कोने कोने में है, विश्व के कोने कोने में है। और अब वही दायित्व हमारे फूलपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी महाराज, ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अवतारपुरी जी महाराज, इन सबके कंधों पर है। ऊंचाई पर पहुंचना तो सरल होता है, लेकिन ऊंचाई पर टिके रहना सबसे कठिन होता है। आज ये संस्था इतनी बड़ी बनी है, कल आप भी गौरव करेंगे। आप कहीं जोधपुर में आएंगे तो हम कहेंगे वो बालक हैं जो स्वामी महेशानपुरी जी महाराज के विद्यालय में पढ़े हुए, विश्व में जिनका नाम है। इस नाम को बरकरार रखना है, नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। हमें वो संस्कृति नहीं चाहिए जो अमेरिका में एजुकेशन लेकर के अमेरिका में नौकरी करते हैं और माता जी का शरीर शांत होता है तो वहां से चाचा कहते हैं चाचा जी वीडियो कॉलिंग करके देख लेंगे, माताजी की अंतिम क्रिया आप कर दीजिए। ऐसी संस्कृति, ऐसी एजुकेशन हमको नहीं चाहिए। हमको वो संस्कृति चाहिए जो माता पिता से जुड़ाव हो, जिन्होंने फटे कपड़े पहन करके बच्चे को पढ़ाया, भूखे रह करके बच्चे को पढ़ाया, कर्जा लेकर के बच्चे को पढ़ाया, और वो अमेरिका में जाकर के कहते कि हम लाख रुपए खर्च करके नहीं आ सकते। आप अंतिम संस्कार कर दीजिए चाचा जी। वो संस्कृति हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो माता के चरणों में बैठ करके माता का चरण स्पर्श करे, पिताजी के चरणों में बैठ करके पिताजी का चरण स्पर्श करे और कहे पिताजी आप धन्य हैं, हम धन्य हैं कि आपके जैसे माता पिता हमको मिले।
जो गौरव करे अपने माता पिता पर, अपनी संस्कृति पर, संस्कार पर, अपने मारवाड़ पर। इसलिए स्वामी फूलपुरी जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अवतारपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी महाराज, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए इन्होंने वो वट वृक्ष लगाया है, आने वाले लाखों सालों तक बीज देकर के विश्व में नए ऐसे गुरुकुल, नए ऐसे विद्यालय, नए ऐसे मेडिकल कॉलेज खुलवाता रहेगा। इसलिए महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप सब बच्चों को साधुवाद कि आप आगे चल करके विवेकानंद जी की तरह देश के कोने कोने में निकले, देश के कोने कोने में सनातन धर्म की ध्वजा पताका को फहराएं और गर्व महसूस करें कि स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने देश के 100 देशों, विश्व के 100 देशों से ऊपर सनातन संस्कृति पहुंचाया। आप देश के 180-200 के आसपास देश हैं, 202 हैं या 203 हैं इस समय वर्तमान में, उन सब कोनों में जाकर के इस ओम दीप गुरुकुल के नाम को वहां पर पहुंचाएं। आपके लिए साधुवाद, आप धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

नमः। श्री दीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंद पुरी जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए, मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में, जिसके निमित्त आयोजन है, ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री उदित नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें यह सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं, पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती है। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए,
गुरुदेव की कृपा से कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे और जा कर के, संत जब आते हैं क्या करते हैं, संत आकर के भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया मैं तुमको कैसा दिखता हूँ। अब उसे न संतों से मतलब था, न किसी से मतलब था। उसने कहा महाराज आप तो हमारे जो गांव में बूढ़ा पाड़ा है ना वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, ये नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा भाई अब कैसा दिखता हूँ। बोले महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी, मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ। महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज ने कहा अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जाकर के फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए और आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं, परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा जो दो अवतार होते हैं भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं, एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज रहते हैं, तो क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं। तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया
और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है। यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज, अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती? महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, हैं मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसी कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली, कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसी कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परम पिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब, हैं देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है। एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा और जो जो कल्पनाएं की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, इसलिए हमको समझने की कमी है। ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है? देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं, एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है, करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ? पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है, सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई
कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे भगवान देने लगे तब केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों क्यों नहीं चाहिए? भाई आपका कार्य क्या है, इस पार से उस पार ले जाना, और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है, आप भी क्या करते हो, इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप भी क्या करना, मुझे उस पार कर देना, यही मेरी उत्तर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए, आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है, इसलिए से मन को शांत कैसे करें, प्रभु आप कृपा करें मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है, हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है, देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबा जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि छुट्टी मार दोगे तो महाराज इसका फल मिलने वाला नहीं है, ये परम पवित्र और परम दुर्लभ भी है। तो इस दिव्य सत्संग सभा का आप लाभ लें, आनंद लें, भजनों का आराम तो करना ही है, सोते सोते आधा जीवन बीत गया, आधा और बीत जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है, इसलिए आए हैं तो दिव्य आनंद लें जब तक शरीर साथ दे, एक दिन की बात है, बाकी की हमेशा रात ही रात है, सोना ही सोना है, इसलिए आज दिव्य आनंद ले। दीपनारायण भगवान की। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दें, बाबू जी की कृपा से थोड़ी भाषा आई, ये भी लोग सज्जन गुरुभक्त बैठे हैं, तो सैल्यूटेशन टू द डिवाइन, ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। आई वुड लाइक टू बो हिज होलीनेस अवर बिलव्ड गुरुदेव विश्व गुरुजी होली फिट ऑन द डिवाइन ओकेशन ऑफ महाप्रभु जी एनिवर्सरी। We are having divine satsang on behalf of Mahaprabhuji's divine day, Samadhi day, and we all are so fortunate one, luckiest one, that we are having this satsang in Om Ashram, which is the spiritual center of yoga in daily life. Here our dear brother Mahamandaleshwar Sri Swami Gyaneshwar Puriji Maharaj, all dear bhaktas, all the sannyasis of this parampara, I would like to say Hari Om to everyone and welcome to this divine satsang. With the blessing of Vishwa Guruji, we are having satsang at Bhakti Sagar. We have got also blessed.

हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त, जो गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं आप लोग प्रसाद लेकर के, आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है, जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप हम जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है। देखो आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं,

जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हे उमा हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, भगवान का भजन, भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा। महाराज सपना वो होता है जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा हो भी रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ। सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है, क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, परम पिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे। हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराएं।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान, आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, माँ प्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को, दीप नारायण भगवान।

0: कुमारी
1: मृत्युंजय वृषभध्वज शूलेन
0: मृत्युंजय वृषभध्वज शूलेन
1: गंगाधर मृद मदनारे
0: गंगाधर मृद मदनारे
1: हर

इति श्री महागणेश पंचरत्न स्तोत्रम् समाप्तम्। ओम रेदि श्रीदाता गौरीपुत्र महागणपतिदेव की जय। ओम बुढ़िये शंकर भोलेनाथ की जय।

देवदिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। होली गुरु जी भगवान की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी सर्वभूम जगत गुरु योगी राज की जय। साब ऋषि मुनि महात्माओं की जय।

श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। देवपुरी जी महादेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

योगिराज परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए, मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में, जिसके निमित्त आयोजन है, ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री उदित नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा, भाग

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें ये सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है। तो वो भी बच्चों का पालन करती हैं। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से, कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे, और जा कर के संत जब आते हैं क्या करते हैं? संत आ कर के भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया, मैं तुमको कैसा दिखता हूँ? अब उसे न संतों से मतलब था, न किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में भूरा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, ये नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी, मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए, और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जाकर के फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए, और आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो, सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी, और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं, भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं?
एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है, तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज रहते हैं, तो क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन, उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं, तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ मैं, अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं, तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है, यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती, महाराज भोजन कर लिया अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसे कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली, कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसी कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परमपिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब, हैं देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है, लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है, एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा, और जो जो कल्पनाएँ की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, इसलिए हमको समझने की कमी है। ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है। देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं,
एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ? पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है, सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे भगवान देने लगे तब केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, क्यों नहीं चाहिए? भाई आपका कार्य क्या है, इस पार से उस पार ले जाना, और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है, आप भी क्या करते हो, इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप भी क्या करना, मुझे उस पार कर देना, यही मेरी उत्तर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए, आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है, इसलिए से मन को शांत कैसे करें, प्रभु आप कृपा करें मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है, हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है, देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबा जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि छुट्टी मार दोगे तो महाराज इसका फल मिलने वाला नहीं है, ये परम पवित्र और परम दुर्लभ भी है। तो इस दिव्य सत्संग सभा का आप लाभ लें, आनंद लें, भजनों का आराम तो करना ही है, सोते सोते आधा जीवन बीत गया, आधा और बीत जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है, इसलिए आए हैं तो दिव्य आनंद लें जब तक शरीर साथ दे, एक दिन की बात है, बाकी की हमेशा रात ही रात है, सोना ही सोना है, इसलिए आज दिव्य आनंद ले। दीपनारायण भगवान की। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दें, बाबा जी की कृपा से थोड़ी भाषा आई, ये भी लोग सज्जन गुरुभक्त बैठे हैं, तो सैल्यूटेशन टू द डिवाइन, ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। आई वुड लाइक टू बो हिज होलीनेस अवर बिलव्ड गुरुदेव विश्व गुरुजी होली फिट ऑन द डिवाइन ओकेशन ऑफ महाप्रभु जी एनिवर्सरी। We are having divine satsang on behalf of Mahaprabhuji's divine day, Samadhi day, and we all are so fortunate one, luckiest one, that we are having this satsang in Om Ashram, which is the spiritual center of yoga in daily life. Here our dear brother Mahamandaleshwar Sri Swami Gyaneshwar Puriji Maharaj, all dear bhaktas, all the sannyasis of this parampara, I would like to say Hari Om to everyone and welcome to this divine satsang. With the blessing of Vishwa Guruji, we are having satsang at Bhakti Sagar. We have got also blessing of Vishwa Guruji today. Evening he was here, he was blessing us. We had prayer with him and then he said, okay, you do satsang. I'm going sitting there, blessing from there. So Vishwa Guruji is always with us. He's always giving blessing wherever he is. He's always thinking about us. He's always thinking that what my bhaktas, child doing, how they are doing. So with his blessing, we are always doing, or we are always practicing that we do always good. So the divine satsang we are having here, you know, the great rishis, great saints, they come on this earth not for themselves, but they come for the human being, for the creatures who are suffering from this cycle of birth and death, which is always very hard. We are always trying our best to escape from